गई माँ बिगमाली ले जुजु किरा कहा मुहिले बिराए भानी कि मेरा दुई बाहु माता ठोकी दे जन्म बापला तेरो आनी तो करना दुरी तो धन को भदुआ तागत।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: नमस्कार रेडियो सैलन सामुदायिक एफएम बैंड थोपलो 7 मेगाहर्ज बाट म पदि प्रसाद सापकोट आज विक्रम संवत 2083 साल श्रावण शुक्ल पक्ष सन् 2026 अगस्त 18 तारीख भाद्र 2 गते मंगलबार षष्ठी तिथि अब स्तुति गरौं
1: आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षेण कल्पय भरी।

நாராயணம் அவையோ பத்தாயினி பயக்கு ஸ்ரீ ஹரிவம்ச புராண ஹரிவம்ச பரமகு யோ அத்தியாயில கரிக்கணும் கத்தி குறாக்கு விஸ்தார கணிச்ச பந்தக்கணும் சொன்ன சமணகாதி பண்ணிக்கணும் சமணகாதி நாமரிக்கா 88,000 ஸ்ரீக பிரதி குரு சுத்தஜிலே பத்தவனு போ சோயினி கதா பைசும் பாயன நாமரிக்கா குருளி உத்தபடி ஜோ ராஜா ஜனமே ஜெயலே பத்தவனு போ சோயினி கதா அருளியாயிர हाम्रा आदरणीय श्रोता महान भावहरूमा ल्याइकन यो कथाहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौ। राजन अब त्यसै मौकामा जुनसुकै कुरा पनि आद्यदेखि अन्त्यसम्म बीबीचमा हुने त्यस्ता किसिमका कुराहरू सबै कुरा गरेर लानुपर्छ महाराज। बीचमा तोडफोड केही पनि गर्नुहुँदैन, जुन छोड्नु हुँदैन। हामीहरूले सारा कुराहरू जो उतापट्टि पुस्तकमा कुन कुन किसिमका विधि कुन कुन किसिमका जुन नीति नियमहरू छन् ती विधि नीति नियमहरू सारा सम्पूर्ण कुरा गर्दै गर्दै लानुपर्दछ महाराज। हामीहरूले पनि सबै कुरा गर्नुपर्दछ, यस्ता ठुल्ठुला यज्ञ आदिहरूमा होस् अथवा जुनसुकैमा होस् अनि जुनसुकैको जो कर्ममा यस्तो विवादी कर्म कार्यमा होस् तापनि हरेक किसिमले गरिकन जुन सारा कुराहरू गर्नुपर्छ। यो महाराज हेर्नुहोस् त्यस्तै त्यस्तै किसिमले गरिकन यता के भनिएका छन् त भने यसलाई भनेदेखि सारा पित्रा तुतम तदा राख्छन् त्यन मानम सुमात्मा जाउँ न बारया मास मुनिर।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: नमस्कार, मेरो बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने म झटक प्रसाद तिमल सिन्हा। म दुख केही दुई चारवटा भजन यसो गाउँ भनेर आएको यहाँसम्म। नमस्कार हजुर। जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देवा, जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देवा, गौरी माता पार्वती पिता महादेव। हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौं है, हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौं है, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारौं है। आरती का जय, राधे राम जी का जय, आरती का जय, राधे राम जी का जय, आरती गरौं प्रभु आती मा तुम्हारे, यो लोको दुख छोड़ी जन्म सुधारे, यो लोको दुख छोड़ी जन्म सुधारे। जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, गौरी माता पार्वती पितै महादेव। हरि हरि सदाई भारी भक्ति गरौं है, हरि हरि हरि हरि सदाई भारी भक्ति गरौं है, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन, छोडेर नजाऊ होइ रुन्छ नि मेरो मन। श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन,